0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा एक महिने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ। कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म एक महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
4: प्रदान गरिने सेवाहरू:
3: गर्भवती जाँच सेवा, महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतो पानी बग्ने समस्या, एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी, पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ। सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
5: ओहो, आज डाई नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करेना कहटो।
6: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
5: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
6: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कै जाइत।
5: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुना चाहल रह।
6: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
7: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
8: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
7: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
8: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यूँ गिल्टी और तमाम मेयर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
8: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97-46-11-786, 98-224-92-377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: भर्ना खुल्यो।
7: यस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
10: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
7: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जिपिए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
10: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
7: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल एयरलाइन्स रिसोर्ट क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस फुड एन्ड बेभरेज इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान।
10: बिआइटिएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन, सफ्टवेयर डेभलपर, आइटी म्यानेजमेन्ट, डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर, आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाण पत्रका लागि बलियो आधार।
7: बिबिएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम, बैंकिङ, व्यवसाय, लेखा, वित्त, मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन, वित्त, बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार।
10: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क, गैर सरकारी संस्था एनजिओ, अस्पताल, विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर, समाज सेवा, नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर।
7: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू, अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक, कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, एयर कन्डिसनर, एसीको सुविधा, समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा, आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श।
10: नोट, बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज, नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड, फोन नम्बर 081-532-07 र 081-535-602, इमेल blc.npj@gmail.com, वेबसाइट brightlandcollege.edu.np।

0: सबै सामग्रीहरू एकै छानामुनि पाइन्छ।
1: स्थान मारुति मेगामार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98 6 99 64 581।

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो आज डाइहर नै मजा लागठो मजासे दवाई करेना कहटो
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र में जाई ना वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई उत्तराखेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूँसी कान खजुईना कान कम सुनना कान दम्मा होना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता और महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिला
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छा फुलटेकरा आर्मी ब्यारक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-86-2697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 98-482-80-465

0: lip on ya. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पीड़ा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आए
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: हेलो सखी।
1: हाँ सखी,
0: का हाल खबर को आवाज में नहीं आवत रहे आपके का वही मारे हम हेलो कहे
1: हम
0: का का लगा कि हम फोन में बतवाई
1: नहीं हम सोचे रहे हैं। हाँ। आज हम बार बार सखी सखी चिल्लाई रहा है, सोचे रहे ना आज ना सावन तो खुशियाली बाद में मनेबे, अब सखी का इधर से ले जाए हम कान वान दिखाए का
0: मतलब। अच्छा तो आप हमको घोराए हो का पुकारे रहे
1: आप घोरा रहे हम बोली थे आप सुन नहीं पाए होगा
0: हम सुन नहीं पाए हैं ना बुलाए रहो सच्चे
1: आप सच्चे उच्चे कतिर कसम खाए कतिर तो हम लोग यहाँ पौना बैठाए हैं साथे गवाही कतिर। आप चिंता ना करो आज के कार्यक्रम में भी हम लोग अपने तना सखी लेके आवागा
0: है सुनबे नहीं की रहे कि आप सखी कहे
1: नहीं तो अब उनसे हम आपका पूछावा जाए अब ये काहे सच्चे और झूठे बात
0: अच्छा,
1: में करा
0: जाए ना कोई बात नहीं
1: कार्यक्रम तरफ चला जाए
0: सुने आप बुलाए
1: सकत है लेकिन हो सकत है हम
0: बुलाए नहीं आप घुरेबे नहीं की हमका कैसे मान ली
1: ना मानो अब आपको पूछा ही था परेशान
0: हाँ,
1: ना हो ना
0: हाँ चलो ठीक है
1: ठीक है
0: हाँ तो है ये है मतलब
1: गवाही माने ना और श्रोता डराई ना जावा जी की जो पहुना आओ तू गवाही मैं साबित करे पड़ते लेकिन आज अब सखी कातिम चिल्लाई रहा आप लोग सुने हो अगर आप लोग सुने हुए तो जरूर कमेंट में बतावा जाए और उसके बाद हम हूँ चिल्लाए हुए कि ना चिल्लाए हुए बोले कि ना बोले वो भी बतावा जाए है ना गवाही उधर छोड़ दी जाए श्रोता के तरफ ठीक हाँ चला जाए कार्यक्रम घर रंगनामा हमने सके अभी सोचा थी तो श्रोता आप लोग जाना चाहते शनिचर के दिन कार्यक्रम घर रंगनामा हम दोनों सके आप लोगों के समझ आएगा वगा एक बजे तक तीन
0: बजे
1: तक साथ दिया जाए लेकिन साथ ही आज के कार्यक्रम में भी सावन स्पेशल चलत है आप लोग जाना चाहते हैं भौरी से सावन तिथि से लग रहा है तो वह सावन हम लोग के माँ जोड़ लिया गया अब हम लोग अपने स्टूडियो में एक सखी का लेके आवागा है अब सखी आप लोगों के जानी पहचानी आप लोग जाना भी जाते हैं कई बार हम लोग उनका शामिल भी करा गया है और उनके आवाज दिल का सबका छू
0: हाँ,
1: जाता है
0: देखा जाए तो बिल्कुल जान जावा जी
1: हाँ और साथ ही परिचय करे खातिर पहले हम लोग सखी का कहा जी परिचय करी है आप लोग जान जावा जी आप लोगन के ही जान पहचान चेहरा हो और हम लोगन के समुदाय में गीत संगीत के खातिर और उनके अंदर कला तो कूट कूट के भरा है फिर भी परिचय देख खातिर हम आपका निमंत्रण करी थे स्वागत है आपका कार्यक्रम घर अंगनामा
2: धन्यवाद
1: और आप अपन परिचय दिया जाए संपूर्ण श्रोता लोगन का
2: हाँ संपूर्ण श्रोता लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नाम सुशीला वैस है
1: हाँ।
2: और हम अवधि उपाध्यक्ष हुई
1: हाँ।
2: और हम हमका ये बहन लोग हमार बहुत प्यार करा थे बहुत दुलार करा थे तो जरूर बुलावा थे नहीं आवे का है आपका तो आप श्रोता का इतना प्यार मिला था तो हमहूँ मचल जाए थे कि नहीं हम जाए का जरूर और अपन उनसे ऐसे मुलाकात भी हो जाए बातचीत हो जाए हाँ। और आप सब कभी हम कुछ अपन दिल की बात भी सुनाई पाई जो सोची थे कि आप लोगों का अच्छा लगे
0: हाँ, हाँ और तो, वाकई में यहाँ अब प्यार तो आपसे हम लोग तो करा ही जाते काहे ना करा जाए आपकी इतना अच्छा मिलनसार व्यवहार है
1: हाँ।
0: और आप बात भी बहुत अच्छा हम लोगों का लागत है ना?
1: और साथ ही हम लोग भूल जावा जा सखी सखी सब जना सखी तना हो जावा जाते
0: हाँ, एकदम भूल मिल जावा जाते हैं तो जिसे लगते नहीं है कि जिसे कि जिसे लगता है कि बरसों से पहचान है हमारे लोगन की है ना
1: अब बरसों सखी है बरसों माने अब कई बरस कहा जाए थोड़ा जाने बरस माने
0: तो बस खाली ताने वाला बात करो नुकुस निकाले खातिर अरे हमें
1: अच्छा कोई चीज भूल जाए अगर सखी तो याद दिलावे चाहिए कि
0: अरे कई बरसों
2: अरे वो थोड़ा हंसावे के लिए बोल रहे थे
1: देखो देखो सुशील दीदी समझ गई लेकिन आप ना आप तो बस गुस्सा आ जाती हो क्या पहले हम का कादर गुस्सा आते लेकिन आजकल आप गुस्सा आ जाते
0: हैं ना आप गुस्सा वाला बात छोड़ दिए इनका
1: छोड़ दियो बात खाली करत हो गुस्सा वाला बात करत हो लेकिन बात का छोड़ देते हो हाँ यही चीज तो बढ़िया है कि आदमी अगर गुस्साए भी बात करे लेकिन वो बात का ये के बात का पकड़ के ना बैठा
0: जाए
1: उसका छोड़ दी चाहिए
0: हाथ भी बिजी है इससे छोड़ दो हाथ से काम दूसरा करो
1: हाँ ये सिद्धांत बढ़िया है कि आप लोग कोई बात का माइंड ना करा जाए कोई बात सुना जाए उसका बतकही करा जाए लेकिन अगर बतकही में निष्कर्ष ज्यादा देर तक ना निकला था तो वो बात का वही तक छोड़ दिया जाए बाद में निष्कर्ष निकलते रही
0: फिर
1: ऐसे हम लोग के सुशीला जो हम लोग के सखी हम लोग के स्टूडियो में आई है उनका स्वागत करा जाते और साथ ही आप लोग जाना जाते कि उनके अपन एक गुण ढंग से उनके एक बुटीक भी है वो अब सिलाई कटाई भी में निष्पक्ष उनके गुण भरा है और साथ ही उनके बारे में हम लोग जानकारी देख चाहिए थे कहते खुशी के बात होते कि हम लोग के समुदाय में कोई महिला अवधि भाषा संबंधी महिला जब उनके गुण ढंग आगे उजागर होते तो हम लोग भरपूर साथ दी थे उनके उजागर की और आगे उन प्रगति करें आपके और प्रगति हो आपका नाम रोशन हो आप लोगों का हर लोग चिन्ह है और साथ ही आप संस्था से जुटा गया है, संस्था के साथ साथ आपके ये खूबी जोन है कि आप एक मंडली में गीत भजन और कीर्तन में जो आप लोगों के मंडली है, वो मंडली का जब देखो तब बड़ा निक लागा था कि ऐसे सुना करा आप लोगों के फेसबुक में देखा
0: था। जब जब गीत सुना करो तो ऐसा मन होता है सुने करो सुने गीत खत्म ही ना हो, ऐसा अच्छा लगा।
1: हाँ
0: कुछ बोले चाहते थे
1: तो वही कहे चाहिए कि मतलब गीत इधर से सुना जाए कि उधर से सुना जाए, अब आपके ऊपर छोड़े चाहिए हमारे आपका देखित रहा है का
0: अब सखी। हाँ। ना गीत इधर के सुना जाए ना उधर के सुना। हाँ। थोड़ा विश्राम दिया जाए,
1: अनुमति ले
0: अब थोड़ा व्यापारिक विश्राम की तरफ चला जाए। हाँ। के बाद चाहे कहो तो इधर से सुना जाए चाहे उधर से सुना जाए।
1: हाँ, वो तो बात में कहा जाए
0: पहले मतलब सखी
1: तो के आप लोग बैठे रहा जी कार्यक्रम सुनते रहा जी और तीन बजे तक साथ दिया जी। आज सावन के विशेष और हम लोग के सावन भगवान के आराधना चलते है और शिव भगवान के चलते है यही संबंधी हम लोग गीत संगीत भी और साथ ही पौना के साथ सखी के साथ हम लोग बातचीत भी करते रहा जी। तो जरूर ध्यान से सुनते रहा जी जावा ना जाइए।
0: तो अभी चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ।
1: हाँ ठीक है।
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतीहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 9816 14 16 19।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: तो आप कह रहे हो इधर के सुना जाए या उधर के सुना जाए? हाँ, तो हम लोग उधर के अबे बाद में सुना
1: हाँ,
0: जाए।
1: वही हम सोचे रहन का सखी कि
0: कब अब सोचे रहे हो?
1: अब सोचे रहन हम जब गान जब मेरे व्यापारिक विश्राम के तरफ चला गा रहा ना तब भी सोचे रहन सोच लिए रहन का। अब हम ये सोच रहे हैं कि अब सदा तो हम लोग सुने ही जावा जाते हैं ना, सुना ही करा जाते हैं गीत संगीत। अब हम यही सोचे रहे हैं कि सुशीला सखी के आवाज़ में सुमधुर मीठा आवाज़ में यहाँ पहले एक कुछ सुन लिया जाए।
0: हाँ, आपके सोच बहुत बढ़िया रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन ये जिम्मेवारी आप तो पहले बहुत बढ़िया से कह दियो सखी, चाहे इधर के सुनो चाहे उधर के
1: तो
0: सुनो।
1: हम देखो ये मारे कह रहे हैं ना चाहे इधर के
0: लेकिन सोच नाम मिल तो, गवा
1: सोच हाँ, मिल नाम गवा। तो नहीं लिए रहे कि इधर के सुना
0: बस, बस आप गुस्सा ना सोच मिल गवा ये तो असर है ना सोच मिल गवा। तो ठीक है सुशीला दीदी, आपके वैसे भी तो आपके परिचय हम लोग करा गया है। हाँ, आपके परिचय तो कर ही ना पड़ी हम लोग के आपका सावन में तो विशेष के बुलावा जाता है और के साथ साथ ही आपका जो सुमधुर आवाज के करते हम लोग जो सुने मतलब बेचैन है
1: बेचैन रह जाता है।
0: और साथ ही श्रोता आप लोग भी ध्यान से सुना जाए ना, कोई म्यूजिक ना कोई बाजा ना कोई कुछ चीज फिर भी आवाज मतलब मिठास रहा थे
1: मंदिरा।
0: हाँ बस आप लोग ध्यान से सुना जाए, हम लोग भी सुने खातिर पहले से तैयार है, यही हमारा चला जाए गीत संगीत के तरफ। तो आप क्या सुना चाह जाते?
2: शुरू में तो हम गणेश जी के वंदना करे चाहिए थे कि कहे से उन्हीं से सब कुछ सृष्टि सब चली और हम सब भी उन्हीं के आश्रय में रही ताकि हमारा
0: कहा ना जाते कि सबसे पहले स्थान गणेश जी के रहा थे। तो बहुत अच्छा है विचार आपके और ठीक है, हम लोग सीखा भी जाए साथ भी दिया जाए
1: दिया जाए सीखा जाए। और
2: बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब साथ दे दियो हमार ताकि हम प्रभु के ध्यान और भजन कर पाई।
0: जी जरूर।
2: बोलो गणपति महाराज की
1: जय।

0: सेना, बोलो गणपति महाराज की जय।
1: तब सखी
2: बहुत अच्छा रहा है,
1: हम लोगों में सीखे मौका पाए जावा जाता है ना।
2: हाँ वही तो, और दिल एकदम उमंग से भरपूर हो जाते हैं। हाँ। और इधर उधर सोचना भूल जाओ है ना सखी। हाँ। और बस वही मिया मस्त हो जाओ।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा ये आवाज हम लोग। हाँ। वैसे भी तो कार्यक्रम से पहले हम लोग हमेशा बातचीत कराया जाता है कि कोई बहाना पावा जाए तो गीत संगीत सुनने का मौका मिल जाए। वैसे कोई कार्यक्रम में भी आपके सुनने का मौका मिला था हम लोग का, लेकिन ये बातें अलग रहा थे कि इतिर हम दोनों सखी हो आप रहा तो। और वैसे सावन माँ जैसे सखी कहना ना बरसों से साथ है, तो बरसों से तो आपके बहुत बरसों से हम लोगों का साथ है। हाँ, तो ऐसे साथ हम लोग ऐसे बना रहा है और गीत संगीत आपसे हम लोग का सीखे का मौका मिले। कैसे हम दिन सुने रहें इससे पहले। हाँ। हम लोग के अब गुरुसराय हमारे विष्णु चाचा आए रहे पहुना माँ। अच्छा। तो कहीं ना हमारे सखी बचपन में बहुत गावत रही।
3: अच्छा
1: हम ऊँची दिमाग में रहा है तो अभी हम ध्यान से देखित रहा है।
2: हाँ वो अब जैसे हम हूँ जाते रहे जब कोई कार्यक्रम में यहाँ तो शौक बहुत रहा है हमका भी। हाँ। लेकिन अब कहत नहीं है जो चीज शौक रहा था लेकिन मंजिल कहीं और रहा था।
3: हाँ।
2: तो जहाँ मंजिल रहा था तो वहाँ इंसान पहुंच जाते, जो शौक रहा था तो शौक शौके रह जाते।
1: ये बात तो सही बात है। ऐसे कहे बात आवा तो हमू बचपन में का करित रहा है, रेडियो खोल के घर चौका है आंगनबाड़ी बहुत सुनित रहा है, तो रेडियो खोल के अपन डायरी कापी लेके बैठ जाते रहा है। जब ऐसे नकटा और बधावा गाना आवत रहा है पूरे कार्यक्रम में एक दो ही गाना आवत रहा है वो काम जरूर लिखा
2: छुट्टी पाई जाते रहे। हाँ। तो दोपहर में आवा कत रहे। हाँ। बस वो जिससे सब काम खत्म कर दिए उसे रेडियो खोल लेते रहे गाना आवे बस कापी में। हाँ,
1: कापी
2: डायरी बनाया।
1: जैसे सवेरे के प्राय पहले का होता है गर्मी में सवेरे की स्कूल होता है हर जगह के, तो हम लोग 12-1 बजे घर आ जाते रहे और 1-1.5 बजे में वो शुरू होता रहा है। तो हमारे पहले तैयारी रहा है की अब आंगनबाड़ी शुरू होने वाला है और कापी कलम लेके बैठ जाते रहे। कार्यक्रम सुने के बाद बीच में दो ही गाना आवत रहा है, चाहे कहो नकटा होत रहा है, चाहे भगवान के ऊपर होत रहा है या बधावा होत रहा है, जो होत रहा है वो काम पहले कापी में लिख लेते रहा है। कापी में लिखे के बाद लेकिन अकेले में गाते रहा है, जैसे जब तक गाओ ना कहत नहीं है।
3: हाँ।
1: तब तक शर्म ना भागत है, जब तक उस चीज के प्रयोग ना करो तब तक अंदर से शर्म ना। लेकिन अपने घर परिवार जैसे कोई फंक्शन पड़त रहा है तो जब गावत रही है अपने बुआ लोग या बड़े बड़े लोग तो वो हमका गावे तो आदत तो पड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर हमारो लाइन दूसर चला गया, पढ़े लिखे लागा गया, उधर से ध्यान हटेगा तो वो अंदर दबके रही गवा।
2: अच्छा सखी देखो हम लोग तो सुना जाता है रेडियो है ना, और सोचा भी जाता है रेडियो में इतने आदमी कैसे बोलत है, ये छोटा सा डब्बा है इमा लोग कैसे खाना खाते हुए कहाँ बैठे हुई है कैसे का होती है, मतलब दिमाग तो उस वक्त बहुत चलत रहा है नहीं।
1: हाँ।
2: लेकिन का पता रहा है कि वही क्षेत्र में हम लोग भी एक दिन आवा जाए।
1: हाँ, बस सेम वही प्रश्न।
2: अब सब कुछ समझ गवा गया है कि ये मेरे के बोला। हाँ। जाते ऐसे रेडियो में आवत है, नहीं तो हम लोग खाली रेडियो जानित रहे गाना कैसे आवत है लोग कैसे गावत है ये नहीं पता रहा।
1: हम तो दिमाग को लगा लेते रहे कि यही तना छोट छोट आदमी होत हुई है,
2: यही घर भी
1: तो रेडियो अगर फोड़ देवे तो अगर घर से डांट परी मार परी।
2: हाँ, अभी नहीं
1: तो देखे राहत रहा है की कहाँ पलटी कहाँ से दिखाई जी के अंदर तो, आदमी घुसत कैसे है
2: कैसे घुसत है। हाँ। फिर यही मैं दिमाग भरम के रही जाता रहा है, लेकिन बाद में यहाँ जब हम लोगन भी यही संचार मीडिया में आवागा
1: पता लगा
2: रेडियो में आवागा तो पता लगा हम लोग का मालूम रहा है कि हम लोगन के भी किस्मत में ऐसा लिखा है कि हम लोग इस
1: पहले के जैसे सबसे पहले चर्चित एक ठो लखनऊ के आंगनबाड़ी है।
3: हाँ।
1: और नेपाल के हम लोगों के सुर्खेत
2: बतासा बुआ बहुत ज्यादा फेमस रात रही है ना। हाँ। तो उनके बहुत अच्छा लगता रहा सुने में यहाँ। तो खैर मंजिल हम लोगन का वहीं तक लेके आवा।
1: हाँ, बस जो सपना रहा थोड़ा थोड़ा उमा हम लोग जुट गवागा। हाँ। आपके पूरा लाइने वही हुई गवा और साथ ही अब दीदी आपके भी ऐसे गीत संगीत के शौक कैसे भवा का भाव कुछ अनुभव आप भी बताओ जा। हम लोग दो जन तो आपके गीत संगीत से खुल गवागा।
3: हाँ।
1: बता दिया
2: तो, हाँ,
1: आपके
2: तो,
1: भी कैसे शुरुआत करागा।
3: हमारी शुरुआत तो ऐसे है परिवार से शुरू होते है ना कि घर परिवार वाले गावे वाले बजावे वाले मिल लेते हैं।
1: हाँ।
3: तो जैसे हमार बहन रहिन बड़ी उन्हों बहुत गावत रहिन, हमार बुआ हैं बड़ी अम्मा रहिन तो उन्हों बुआ हैं बड़ी अम्मा रहिन तो उन्हों बहुत

0: अपने लिए बहुत कोशिश करें, लेकिन हम ही से गलती हो गए। आज हम गलती अपन मानित है कि हमें याद नहीं रहा, लेकिन हम याद करे वाले ग्रुप में हम बैठ गए जाए के कि हमें याद है। अब हमारे जो टीचर रहीन है वो कहें सुनिन, जब साथे में सुनाओ तो जेका ना याद रही तो पूरा अच्छे से बोलिन ना पाई। तो मैं वो कहें सुशीला खड़ी हो तुम अलग से सुनाओ। अब हमें याद ही नहीं रहा तो हम कहाँ सुनाई उनका। तो कहें कि नहीं गलत करी हो, आप जैसे सुनाओ याद करो तब सुनाओ, ऐसे ग्रुप में झूठे में ना बैठो। फिर हमें शर्म महसूस हुआ तो हम जाएंगे ड्राइंग वाले टीचर के पास बैठ गए। हम कह नहीं अब हम ना जावे, ये मन बहुत कठिनाई है संगीत हम ना जाए। फिर हम कला में बैठ गए। अब कला में बैठ गए फिर बिचारी हमारे टीचर बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ भी हुई हैं वहाँ, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो बिल्कुल वो हमारे लिए बहुत परेशान, हमें बुलाइबो करी सुशीला ना ऐसे ना ऐसे गलत करी बेटा, इसी मारे हम तुमका कहन कि बीच में ना बैठो अलग से सुनाओ। और हम तो हमारे अच्छाई के लिए कहे थे, लेकिन हमार बच्चा बुद्धि तो हम ना माने तो हम कले में बैठ गए।
1: मतलब आपका गावक
0: नहीं। हाँ तो हमें ये चीज का अफसोस है, अगर हम उन टीचर के बात मान लेते हैं तो आज हमें शायद हारमोनियम बजावे स्वर लय ताल हमें हर चीज के जानकारी अच्छे से मिल जाते। लेकिन फिर भी हमें लगा था सरस्वती माता का कृपा हमारे पे रहा, तो हम उनके आशीर्वाद से गाय तो हम ले थे, लेकिन ओके साथ हारमोनियम के हो थे जरूर। हारमोनियम अगर बजाओ करे बाद गाओ तो गीत के कहते सोने सुहागा हो जाते। तो हम अपने टीचर से अपने हम क्षमा चाही थे और उनके आशीर्वाद भी चाही थे कि शायद उन्हीं के आशीर्वाद से हमें आज हम गाय ली थे।
2: हाँ ना ये बात सही है, आप इतना गावत हो मतलब है साक्षात सरस्वती माता के वास है आपके वाड़ी में, यहाँ मिठास है। तो अब जो है टीचर के भी आशीर्वाद
1: हुआ कि अधूरा मा लाइन बदल दी।
2: हाँ, अधूरा लाइन
1: जैसे स्टार्टिंग तो ये कहें कि हम संगीत में जाइबे, अब संगीत लेके पढ़ती हैं ऊपर तक जाती तो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते सीखते सब चीज ज्ञान हो जाता। लेकिन लयबद्ध गीत संगीत तो जो नॉर्मली हम लोग गावा जाते तो गायन, लेकिन उनके स्वर तो सरस्वती के पास है ये है। अब स्वर की वजह से लेकिन शिक्षक का भाई पछतावा भव हो कि गा जाए इनका न टोकित तो शायद ही क्लास कला में न जाती मैं यही रहती। अब लेकिन उस समय क्या होते बचपना तो रहते
0: बचपना
1: दिमाग में आदमी का आपका जायक रहे उस क्षेत्र में कला तरफ तो आपका जैसे भी बात हुई के कैसे आप सोच के कह रहे हो ना कि कला हमका ज्यादा सजीला रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह हमें पता नहीं उन्हीं टीचर के आशीर्वाद से और कैसे भी कला में जैसे कला है एक हमारा जैसे आज हम सिलाई सिलाइयों हम सीखे ना है लेकिन मन में रखे जैसे कि हमें कटिंग करे के हमें खुद सूट काट के हमें सिलाई का
1: डिजाइन अपने
0: तो हाँ तो वो का हम खोज बीन आज तो इतना बढ़िया हो गया मोबाइल सिस्टम कि अगर हम कुछ भी ढूंढे चाहे तो हमें मोबाइल में मिल जाते
1: हैं। सर से कह के
0: हम धीरे धीरे हम कोशिश करत करत आज हम डिजाइन कोर्स जो कई के इंसान बनावत है हम ना ही करें लेकिन यही हमारा डिजाइन कोर्स का यही टीचर है हमारे मोबाइल
2: मोबाइल।
1: आपके जो सोच है आपके जो अंदर से जुनून है वो हमेशा कायम रहा है।
2: और भगवान जो भी आप करत हो करे आपके हर इच्छा ना
1: जो भी आप करत हो हम लोग के सहारनीय है और हम लोग चाहित भी है कि ऐसे हर महिला अपने आप का ये ना सोचे कि हमका कुछ नया हो। अगर आप मन में हर गृहस्थी घरेलू चीजन में कोई भी एक चीज का आप रास्ता बनावा जाए उसका उजागर करेगा आगे लावा जाए आप जरूर सक्सेस हो जाए। कैसे जैसे कहा ना जाता है आजकल भी देखा जाता है कि हर जगह हम लोग काम के व्यस्तता के कारण जाओ जाते हैं अचार रेडीमेड खरीद के लावा जाता है कि नहीं है। देखा जाते कत्ते लोग अचार के तालीम देते हैं कहा देते हैं लेकिन उस क्षेत्र में तालीम तो देखे मिलते है लेकिन उस क्षेत्र से आगाड़ी को महिला बढ़ा है नहीं घरेलू महिला है व्यापार के क्षेत्र में पहले व्यापार से नहीं घरेलू क्षेत्र से कैसे बढ़िन सीखिन फिर बढ़िन उनके आज सक्सेस भवा कि नहीं भवा इस क्षेत्र के भी हम लोग का जानकारी अभी लेख बाकी है पता करा जाते है।
2: तो सखी अभी बाद में पता और कर लिया जाये।
1: हाँ पर भूल गए देखा जा सके बतवाते बतवात भूल गए
2: अभी पता करा तो बहुत देर तक पता
1: आप भी माफ करा जी पता हम लोग बाद में कह लीजिए ठीक है चला जाए इशारा हुई वह प्राप्ति में अभी हमरे सखी तो चला जाए हम लोग विज्ञापन के तरफ फिर आओ जाते कार्यक्रम घर अंगना में ठीक।
2: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
3: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी

0: Patagonia. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
5: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए, अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
5: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मिलकर उपचार भी उपलब्ध है।
4: अस है तो अम्मा कहीं आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
5: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेयर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में हो ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में हो छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ब्रामिलो उनके इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583-697 और 98014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: सखी
1: हाँ सखी,
0: अब उधर तो सुना गया हम लोग है नी सावन में मोरनी बन के चमचम नाचू, तो मोरनी बन के तो मोरनी हरियर तो रहते है और हम लोग तीनों जना हरियर हरियर हन ठीक है, मतलब मोरनी नाम नहीं दिया है लेकिन हरियर हरियर हन। लेकिन अब हम लोग दीदी से कहा चाह जाते है उधर तो सुन लिया गया नी श्रोता, लेकिन अब इधर से कुछ सावन के बारे में, ऐसे सावन चलते है और सावन के विशेषता में कुछ आप थोड़ा छोटा मोट सुनाए दी जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम लोग कान खड़े सुनने का तैयार है ना।
1: बिल्कुल
2: हाँ, अपने सखियन के साथ में हम कुछ सुनावे चाहे थे कजरी गीत।
0: हाँ जरूर
2: है ना, चलो। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आइल नदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया।

नगरिया बदरिया घेरे आयल न नदी कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरे आयल न नदी कितने दामुल फांसी चढ़ी है कितने गोली खाई के मरी है कितने दामुल फांसी चढ़ी है कितने गोली खाई के मरी है कितने पीसत हुई है जेल में चकरिया बदरिया घेर।

0: धन्यवाद,
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नंद भौजाई के भाई है, सही बात है, नंद का चेतावनी दे थी भौजाई, लेकिन नंद भी कम नहीं है तो सही बात है। ऐसे गीत संगीत से जो भाव रहा थे, भाव का हम लोग समझा जाते हैं, और भाव उनके ऊपर हर रिश्ते माँ हर माँ चीज माँ गीत संगीत बनावा भी जाते हैं।
2: तो सखी, हाँ, सखी बजे के टाइम चेक के तरफ चला जाए।
1: हाँ ठीक है, समय बाबा है, ठीक है, टाइम चेक की तरफ फिर आवाज़ है कार्यक्रम घर अंगना में। ठीक है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
3: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथ टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
3: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437

0: Insomnia Extreme Energy Drink.
1: कर्मचारी आवश्यकता बारे सूचना सूचना सूचना। यस बहुद्देशीय कृषि कम्पनीलाई केही कर्मचारी आवश्यक परेकाले तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला। तपसिल पद सामाजिक परिचालक, आवश्यक संख्या 10 जना, बाँके 3 जना, बर्दिया 3 जना, दाङ 2 जना, कपिलवस्तु 2 जना र रूपन्देही 2 जना। पद कम्प्युटर अपरेटर 1 जना, कम्प्युटरमा दक्ष वा डिप्लोमा गरेको, काम गर्ने स्थान बाँके र बर्दियाका सबै पालिकाहरू, आवश्यक योग्यता +2 पास भई सवारी साधन चलाउन जान्ने, तलब कामको आधारमा हुनेछ, फिल्डमा गर्नुपर्ने कार्य व्यवसायिक किसान समूह निर्माण गर्नुपर्ने 6 देखि 12 महिनासम्म, त्यसपछि कम्पनीले अन्य पदमा कामको मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्नेछ, सोही बमोजिम तलब भत्ता पनि थप वृद्धि हुनेछ। किसान समूह निर्माण भएपछि सामूहिक कृषि व्यवसायको लागि डाटा संकलन फारम भरी कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ। सम्पर्क ग्रीन रोज बहुद्देशीय व्यवसायिक कृषि फर्म प्राली, नेपालगञ्ज, बाँके। मोबाइल नम्बर 97638918 45।
2: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
3: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
2: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
3: सम्पर्क 97051148 47।
2: सोफा हब नेपालगञ्ज,
3: विश्वासमा नम्बर 1,
2: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
4: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है, और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक, नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11, बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97638 11786, 98224 92377।
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: हाँ गाना भी सुना गा है ना?
1: हाँ सुना तो गा।
0: अरे बहना अखियाँ है प्यासी प्यासी, हाँ। गाना बहुत अच्छा रहा है ना?
1: वही तो, हम लोग बैठे ना अतः तो ध्यान तो बहन और सखीन तरफ तो हमारे हाँ। जय है ना, अंगना में तो बैठे ना हम लोग। ठीक है, तो आज के गठरी हमारे लोग के नैलावा का ना गठरी के जरूरत का है आज।
0: वही तो गीत संगीत इतना बढ़िया बढ़िया तो
1: सुशीला दीदी पर आता गठरी है ही है।
0: हाँ वही बात आई है
1: आज हम लोग हल्के हैं।
0: हाँ हल्के हैं और इसे कहा नहीं है कि गठरी के भंडार है जो कि सुशीला दीदी लेके आई हैं।
1: हाँ और गीत संगीत उनके हम लोग सुना का, आप जैसे गणेश जी के हम लोग सुना का भजन, सावन के बारे में सुना का, अब आवाज़ के तो बातें ना करा जाए, अब हम लोग का आप लोगों का कस लाग जरूर आप लोग अभी बतावा जाए। और वैसे जैसे दीदी आपसे थोड़ा बातचीत करे भी चाह जाता है कि जैसे ये क्षेत्र में आप आवागा गीत संगीत भी है संस्था में है, तो जैसे हम लोगों के जो समाज है इस समाज के बारे में आपका सलाह देख चाहा जाता है अपने सखीन लोगन का, अपने साथी लोगन का और हम सारी महिलाएं लोगन का, कुछ तो जरूर हुई जैसे आपका कष्ट हुआ कि मतलब बाहर निकले में कत्ता समस्या भवा है ना, कुछ सलाह भी दिया जाए कि अगला हाँ। जो हम लोग के सखी लोग हैं हाँ। उनके अंदर भी थोड़ा हौसला आवे का।
0: हाँ, हाँ एक हिसाब से आप जो है गृहिणी होए के बावजूद भी टाइम दिया गया है ना इस क्षेत्र में, तो आप कैसे आपका उस वक्त जो है कैसा अनुभव होता है आप अपने कुछ बतावा जाए।
2: हाँ,
0: उस
2: बिल्कुल
0: वक्त हर चीज के सामना तो करे पड़ा
2: बिल्कुल
0: हुई
2: है। ये सब हर महिला का जानकारी हाँ। होनी चाहिए कि पहले तो आवाज नहीं इतना तो सोचे रहा थे जब ससुराल आवाज हाँ, तो हाँ। उनका तो रहा था कि हमें जितना बड़ा परिवार है पर बड़ा है या छोट है हाँ। तो उनकी जिम्मेदारी उनका अच्छे से निभावे चाहिए और ये हमारे तरफ से हमारी सोच से कि उनका निभावे चाहिए, हर लड़की का अपन ससुराल देखे चाहिए अच्छे से और अपने तरफ से अच्छा करे चाहिए। हाँ बाद में परिवार वाले का यही चीज़ हम थोड़ा सा हम सुने मोबाइल में कि लड़की तो शुरू में वैसे रहा थे जैसे उनका परवरिश होता है,
0: परवरिश होते हैं हाँ।
2: तो अगर वो शुरू में सही हैं, सबका कहना ही है कि पहले तो सही रहे लेकिन बाद में बिगड़ गए तो बाद में बिगड़िन काहे वो
0: काहे बिगड़िन हाँ।
2: तो वो आपके संस्कार
0: लापरवाही
2: आपके घर में हाँ। जैसे होत है वो देखत गईन
0: हाँ।
2: जैसे देखत गईन तो उनका बदलाव धीरे धीरे वहीं वो ढलत चली जातीन, तो यही कारण है कि हम बहु बेटी का हम गलत नहीं बोल सके थे, उनके संस्कार तो वही रही शुरू में जो वो मायके से सीख के आए रहीन और बाद में अगर वो बिगड़त हैं तो वो आपके परवरिश के वजह से आपके साथ
1: आपके घर के आप संस्कार ले
2: वो संस्कार लेके
0: घर में जिसे हाँ। लोग देखा थे तो वही मेरे के
2: और आजकल का बेटियन का भी चाहिए थोड़ा ये चीज चाहिए देखो देख के केहू को पर ना जाए वो
0: हाँ।
2: अपन घर परिस्थिति अपन माहौल देखे कि हमारे घर के माहौल कौन है, क्योंकि दुनिया बाहर से दूर से बहुत चमका था लेकिन जब नजदीक जाइ हो ना तो कोयले नजर आई तो एक इस जानकारी जरूर ले चाहिए कि हुक देख के ना जाए चाहिए देखियो तो घर बिगड़े सवाए सुधरी ना। और हाँ हिम्मत सबके अंदर हो चाहिए कि लोग हमें जाने जाने लेकिन संस्कार में रह के
0: संस्कार में
2: रह के कि हमारे घर परिवार वाले का भी कोई गलत ना कहें कि तुम्हारे घर के बहुरिया देखो हियाँ निकल के ऐसे गलत जगह पे जाते हैं या गलत जगह गलत साथी के साथ पकड़े हैं, वो भी अपने इज्जत और संस्कार का लेंगे या कहत ना है कि एक पुस्तक अगर गंदा हो जाता है सात पुस्तक का बदनाम करत हो जाता है उनके पीछे हमारे जितने पुरखे हैं वो भी बदनाम होते हैं अगर हम गलती करी थे तो
0: हाँ अच्छा काम किया जाए हाँ, तो फिर अच्छा ही नाम हुई है,
2: अच्छा नाम हुई है आगे भी पीछे भी
0: परिवार
2: और हमारे परिवार
0: घर
2: भी
0: का, हाँ, हाँ एक औरत जो है दोनों परिवार का लेके चलती
2: बिल्कुल,
0: तो उनका जैसा ऐसा मौका ना मिले
2: हाँ मौका
0: उंगली उठावे का कोई
2: बिल्कुल इज्जत में रह के अपन काम करो और काम करे का अधिकारी तो सब होता है,
0: सब होते हैं
2: चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो सबका अगर वो अपने पे ये चीज निश्चय कर ले कि हमें करे है और इज्जत के साथ करेगा तो पुरुष के पीछे ना है नो पुरुष से आगे बढ़ के दिखावत
0: हाँ।
2: और कई के दिखावत है उनके अंदर इतना है
0: क्षमता है
2: कि शायद वो उतना पुरुष भी ना कर पावे, एक महिला सोचो घर भी देखे हाँ। बावजूद भी बाहर भी कितनी अच्छे ढंग से वो संभालत
0: हाँ।
2: और सबके लिए प्यार ही प्यार बस उनका क्या जरूरत है अपने परिवार से खास तौर से अपने पति से उनका प्यार चाहिए,
0: प्यार चाहिए, टाइम चाहिए, चाहिए। हाँ।
2: वो अगर उनके अपने पत्नी के सिर्फ इज्जत कर लें, सिर्फ पति से उम्मीद ही है, तो शायद वो पत्नी के अंदर इतना हिम्मत आ जाए कि पूरे परिवार का वो संभाल सका थे अच्छे से।
1: सही संदेश दिया है। अब आपके संदेश हम लोग मनन करा जाते हैं और सुना भी गया है, लेकिन एक और बात जैसे आपके मनन का है, जैसे हम बात रखे चाहिए थे कि बहुत से हम लोग के समाज में कई समस्या हैं कि हम लोग या अन्य महिला या कोई हम लोग के अग्रज, हम लोग के बिटिया या बहन या जो भी समाज में हर चीज़ वो पड़ाव पार करते हैं। जैसे घर के बंधन फाउंडेशन तो पहले न रहा थे, लेकिन उनके साथ साथ लेके बिटिया चला थी, लेकिन वो बिटिया जब आगे कुछ करे सोचा थी, जैसे मान लियो आप आवागा एफएम में बोला गया या हम लोग बोला जाते, ऐसे चीजन का मूल्यांकन सब कोई बराबर, जैसे हम लोग कहा था ना पांच उंगली पांच बराबर नहीं है, ऐसे सब लोग बराबर मूल्यांकन होके नहीं करत है। बहुत जना के सोच का होते कि बिना काम के ये लोग का करत है, बहुत जना कहा थे कि हाँ ये फालतू चीज है,
0: फालतू चीज है,
1: बहुत जना कहा थे ये लोग खुला अपने मनमानी ये सब टहरा तुहरा थे, कार्यक्रम दुनिया के चलत हैं, मतलब ये हम लोग अनुभव करके ये समाज के विकृति के बारे में कहा गया। ये विकृति के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बहुत आप का कहे चाह जाते, जैसे आप सही हो फिर भी आपका गलत साबित करे खातिर चार उंगली
0: प्रयत्न
1: कर रहा है, वो जगह पर का करा जाए, महिला का करें, मतलब उनका का करे चाहिए।
2: पहली बात तो हमें अपने सोच से हम ये बताए थे जो हमारे ऊपर
1: भी था। बस आपे के फीलिंग के ऊपर कहा जाता है।
2: जैसे एक पुरुष वो दुकान पे रहा थे या बाहर सर्विस कर रहा
1: था, बाहर जाते हैं कहीं भी जाते हैं,
2: और एक महिला घर में है, चार दीवारी में है, उनका वही चीज देखा था जो रोज देखा था, वो घर के अंदर वही रही, और पति बाहर चार लोग से बात कर रहे थे, चार लोग से अच्छे से बात कर काव देख है काव लेख है बाहर गए नहीं, तो उनके दिमाग है अपन अगर बदल बदल के चीज उमन कुछ डाला जाता है आवत है, तो वो हमारी ऐसे लगा था कि जैसे उनका खुश रहा है। अगर वो इंसान खुश रहा था तो पता है वोकरे अंदर एनर्जी भरत है, ताकत भरत है, हिम्मत भरत है,
1: हौसला बढ़ता
2: है, हौसला बढ़ता है ना। लेकिन एक महिला का देखा तो वो घर में रह के, घर में रह के सिर्फ इतना ही देखा था कि हमें घर में वही चीज रोज रोज हमें देखा था, तो उनका दिमाग वहीं तक स्थिर रहा था, वहीं तक स्थिर रहा था, तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन में वो आ जाते हैं, मतलब सोच उनके दिमाग कमजोर हो चला जाते, कमजोर हो चला, लेकिन ये परिवार के लोग सोचत ना है
1: हाँ कि का कारण है,
2: तब उनका कहेंगे ये देखो बीमार पड़ गए, अरे बीमार तो पड़ गए लेकिन कौने वजह से बीमार पड़े ये तो देखो,
1: हाँ पहले कारण पता लगा पड़ा,
2: पहले उनके शुरू में सिर दर्द शुरू हो जाए,
1: हाँ,
2: तो अगर हाँ एक टाइम वो चाय ना बनाए के दिन तो परिवार वाले का मन बिगड़ जाए,
1: हाँ।
2: देखो सोवत इन चाय ना दे, लेकिन इनाए सोचा थे, और हाँ वही महिला अगर एक दिन दूसरे दिन बाहर निकाल देन हम हाँ। और बाहर गए नू और हसत खेलत आइन के आज तो उनके मन इतना बढ़िया है, चाहे उनसे एक घंटा काम और ज्यादा ले लो, काहे से
1: वो खुश है ना, खुश अपने हैं। मन के काम करे पाइन,
2: खुश हैं हाँ। खुश से खुशी से उनके शरीर में इतना ताकत आई गए, इतना एनर्जी मिल, लेकिन का ये घर के परिवार वाले ये सब सोचे ना चाहिए, देखे चाहिए कि ये काहे खुश है, तो वो चीज उनका दे, अरे हफ्ते में तुम एक बार घर के महिला का चाहे चलो ना कुछ करा था घर देखा था, तो हफ्ते में एक बार तुम लेके जाओ बाहर कहीं भी ले जाओ,
0: कहीं भी ले जाओ
2: घुमा लो,
1: उनका
2: संबंध जैसे एक मोबाइल का हम चार्ज करे थे वैसे एक महिला का भी हम चार्ज करने के लिए उनके लिए उनके खुशी के लिए हम कहीं भी उसके से पूछ लिया जाए तुम कहाँ चले चाहते हो, मंदिर चले चाहते हो, होटल चले चाहते हो, कहीं घूमे चले चाहते हो, उनके मर्जी से एक दिन उनके लिए निकाल लो, तो देखो वो महिला का कभी ना वो बीमार पड़ी अन्ना तुहार कभी काम के लिए इनकार करी।
0: सही बात है, वो वक्त जो है महिला लोगन का भी देख चाहिए,
2: बिल्कुल
0: उनके भी मन के बात का समझ चाहिए,
2: बिल्कुल
0: कि उन भी का चाहते हैं,
1: बस वही जो दीदी के कथन है कि दोनों जना का बराबरी करे चाहिए, जैसे पुरुष काम में जात है तो वो जब थकान होते कोई चीज की चिंता होते तो घर में भी उस चीज का ध्यान रखे पड़ा कि आज ही काहे परेशान है, काहे चिंता या काम में काहे नहीं,
0: पता हो जाता है
1: उस चीज का पता परिवार का लगावे पड़ा, और जैसे महिला का वो जैसे घर परिवार साथ देते बहिरे जाए देते हैं तो फिर जब महिला वही हिसाब से जब खुशी होए का होता तो आपन जैसे घर के श्रीमान पति का या घर परिवार का आपन सोच उस चीज पर सोच से सोचे चाहिए,
2: सोचे भी चाहिए और उनका सपोर्ट भी करे चाहिए। हाँ। कि अगर ये बाहर से आई है तो थोड़ी देर के लिए अगर उनका एक गिलास उठ के पानी पिया दो तो वो
1: घटना चाहिए,
2: तुम छोटे ना हो जाइयो बल्कि तुम्हारा और मान बढ़ जाए उनकी नजर में।
1: ठीक है, अब आप जो बात रखागा सही बात है कि हम
0: बात के सही कहागा।
1: हम लोग
0: महिला भी काम कर रही है ना, बाहर काम कर रही है, अगर जिसे महिला के भी जो इसे थकान लग जाती है ना, घर के काम करो फिर बाद में ऑफिस के काम करो, तो अगर एक गिलास पानी मांग के पी लिए से जिसे कोई भी दे है तो कोई घटनाएं जाते हैं।
1: बस सके यही चीज है जो हम लोगों के समाज में जो आजकल की समस्या है, कहा ना जाता है घर दूरी, घर मायका से घर अपन घर बिगड़ा, बिटियन के समस्या, उनके जिंदगी में थोड़ा जो समस्या आवत जात है। अब जब अपन समस्या कोई चीज मायके में जिक्र करे लागत है तो कहीं की चुगली लगावत है ना, अब अपन मायके में भी ना बताए बिटिए, ससुराल में भी खुल के ना बोल सकत ही, फिर का होते है? उनके अंदर वो मानसिक तनाव बढ़त चला जाता है, मानसिक तनाव बढ़े के बाद का होते कि वो खुल के अच्छे से खुशी हुई के काम भी घर के ना कर पावत है तो फिर और मानसिक तनाव बढ़त चला जाता है, परिवार वाले कहिए देखो ये काम नहीं करा थी, बैठ के खाए के चाह थी। लेकिन एक सोचा जाए तो महिला पुरुष के हम फर्क नहीं, हमू फर्क नहीं निकाली थे, लेकिन जो महिला घर में घर परिवार सास ससुर बाल बच्चे जन्माई के बाल बच्चन के पालन पोषण करके उनके सारा चीज काम कई के फिर वो अपने सर्विस में अथवा अपने काम में या आपके तना या एक ठो मान लो आप बुटीक है हाँ। या फिर पार्लर है या फिर सिलाई कटाई के टेलर टाइप का है या फिर कोई कंपनी खोले है या कोई दुकान शॉप है, कोई भी जरिया हो सकता है, अगर वहाँ ड्यूटी देते हैं तो अगर उनके लिए कोई का टिफिन में खाने ले जाए पड़े तो उनका बोझ न माने के चाहिए, उनका एक कप चाय बना के कभी पिला पे तो बोझ न माने के चाहिए, कहे से दोनों के बराबरी, वो तो सुबह अपन फर्ज निभाए के सारा काम करके तो ड्यूटी में
2: बिल्कुल
1: गई है महिला। अब दोबारा का होते कि उनका कुछ चाहिए, कभी थकान होता है आज को हमका एक कप चाय बना के पियाए दे
2: बिल्कुल
1: ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो छोट छोट खुशी है
0: सब हाँ परिवार सब मिल के एक दूसरे का छोट छोट दुख दर्द का समझ के
1: घर परिवार का बड़ा खुशी चाहत है, मतलब सब चीज मिला सब चीज काम हो चाहिए सब चीज हो बड़ा, लेकिन महिला का क्या होता है छोट छोट खुशी चाहत है कि छड़ी बदलिए उनके दिमाग थोड़ा चेंज हो जाए, खुशी महसूस हो जाए, जब खुशी हो जाते हैं अंदर से तो उनके और काम करे मन लागे लागत है। अब ये हम लोग तीन महिला बैठे हैं, तीन महिला के कुछ अपना अपन अनुभव के कारण हम लोग बातचीत करा गया है, कहा दीदी का कत्ता हम लोग कहा जा गाना गाओ, लेकिन आप तैयारी करा जी फिर एक गाना तो जरूर हम लोग सुन
0: में ठीक है, अभी चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ, दीदी जो थोड़ा विश्राम दिया जाए है ना, बोलत बोलत भी जो है
1: हाँ सही बात विश्राम है। चाहिए हम लोग तो ऐसे है ये लड़े में तो आगे हो गए हैं, थकते नहीं है ना सके फिर भी
0: हम किसी से कम नहीं है ना,
1: नहीं कोई से कोई कम नहीं है।
0: अच्छा चलो
1: चला जाए
3: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550Dले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठुलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
4: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
4: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देउ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
4: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
6: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा बैचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
4: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 580 36 577, 98 580 28 195 र 98 580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार। आज म एकदम खुसी छु।
7: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
4: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भोलि नै बाबालाई भनेर जान्छु।
7: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
4: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बिबिएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यही जाने निर्णय गरेँ। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
7: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
4: ल सुन, त्यसो भए 98 580 40 388, 98 045 086 26 र 98 580 85 040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
7: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
8: भर्ना खुल्यो।
9: एस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
8: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट बिआइटिएम, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क बिएएसडब्ल्यू।
9: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम जिपिए प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
8: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
9: बिएचएम ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल एयरलाइन्स रिसोर्ट क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस फुड एन्ड बेभरेज इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान।
8: बिआइटिएम ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन, सफ्टवेयर डेभलपर, आइटी म्यानेजमेन्ट, डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर, आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रका लागि बलियो आधार।
9: बिबिएस ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम, बैंकिङ, व्यवसाय, लेखा, वित्त, मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन, वित्त, बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार।
8: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क, गैर सरकारी संस्था एनजिओ, अस्पताल, विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर, समाज सेवा, नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर।
9: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू, अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक, कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, एयर कन्डिसनर, एसीको सुविधा, समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम, इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा, आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श।
8: नोट, बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज, नेपालगञ्ज 10, पासाङ लामु रोड, फोन नम्बर 081-532-07 र 081-532-602 इमेल blc.npj@gmail.com वेबसाइट brightlandcollege.edu.np
10: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
11: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
10: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
11: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
12: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
10: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
11: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
12: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98-61-14-16-99
13: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दैछ थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन
14: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
13: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ
14: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु
13: कस्तो खबर
14: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ
13: ए साँच्चै
14: अझै सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ
13: ए त्यो त झन् राम्रो
14: हो नि डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस एमडी केयु आईभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस एमएस केयु वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ
13: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो
14: अझै अरू सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे एक्सरे इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा
13: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि
14: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न
13: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज फोन नम्बर 081-531-860 र 081-531-861

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
2: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।
3: बन्द गरे छ
4: सके बस आई का बात
3: रिमोट बना लो सकी
4: टुप से करी बस बोले लागो मुंह बंद हो जा फिर
3: ठीक है। तो दीदी जैसे हम लोग बातचीत करा जाता है तो हम लोग के समाज के बातचीत करा जाओ। ऐसे सावन चलत है, सावन के सखी सहेली से चारों तरफ मेहंदी है नी, हरे हरा कपड़ा, मेहंदी चूड़ी, हरियर चूड़ी, ये सब चीजें हैं। आप भी पहने हो, हम लोग भी पहने हैं है नी,
4: सब लोग।
3: तो अब ऐसे कहा ना जाता है, इसे पहले भी जाना जाता सुना गया है कि सावन महीना भर शंकर भगवान के महीना होते है। तो शंकर भगवान सावन के उनके विशेषता है कुछ, सावन के विशेषता में शंकर भगवान के कुछ सुनाए दिन जा कहे रहे ना आपसे सुन रहे जरूर।
5: सावन में यही है कि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं हैं, एमन कांवड़ के बहुत ज्यादा महत्व है। सुल्तानगंज से हरिद्वार, वहां से जल लेके, सुल्तानगंज से जल लेके बैजनाथ धाम में जल चढ़ा था, और बाबा के बहुत बड़ा कृपा है। हरिद्वार से लेके जल नीलकंठ कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कांवड़ बनाए रहते हैं भक्त लोग कि आजकल तो हर गंगा जी के किनारे इतना भीड़
3: रहा थे,
5: हर जगह से कांवड़िया अपन जल भर के बाबा का हाँ बिल्कुल जल अर्पित करा थे। हर सोमवार में पहुँचे चाहा थे कि पूरा सावन का सोमवार जितना पड़े हम सर सोमवार सोमवार जल चढ़ाए थे। तब बस यही उनका कृपा ऐसे बनी रहे, बाबा अपना कृपा ऐसे बनाए रहे सब पे, अपने भक्तन पर, और हम सबका ऐसे सेवा मिला करें।
4: चलो तो सुनावा जाए भोलेनाथ के।
5: हाँ
4: हम लोग भी उमा मस्त हो जावा जाए।
5: भोले जी और गौरा जी के थोड़ा नोक झोंक तो हुआ करा था।
3: हाँ, तो हाँ, घर परिवार में।
5: और भोले जी तो भोले है ही
3: है,
5: हाँ बस सुना करा थे। तो हम उन्हीं का रिझावे खातिर थोड़ा भजन भाव सुनावे चाहिए थे।
3: ठीक है, हम लोग साथ दिया जी, और भोलेनाथ तो है ही सही, सावन भर तो भुलाई नहीं सका जाता, वैसे भी भगवान का खूब भुला हुआ था, लेकिन फिर भी
5: बिल्कुल बोलो भोले बाबा की
3: जय।

0: बोले बोले बाबा की
1: जय हो। आप ये का सुन के तो हम लोग मस्त हो गएगा, सही बात है नहीं सखी?
2: तो सखी
1: पूछो ना, हाँ सखी
2: पूछो ना,
1: हाँ तो आप सखी पूछबे ना, आप बताओ क्या कह रहे हो सखी?
2: हम
1: पूछबे ना,
2: हम
1: तो सखी कहे हो ना, एक तो इधर मजे ना ले दियो लास्ट में, आप तो सखी कह दियो, अब बोलो आप।
2: नहीं सखी, अब देखो ना टाइम के पास वही कहीं तरह व्यापारी मिश्रा कहा कि हम सखी कहा है दोनों तरफ नजर।
1: नहीं नहीं नहीं, आप हम लोग कहे ना प्राप्तिक में आप इशारा दे, हम लोग छुपाई गवागा
2: हमारे, अब बात कर लिया
1: सखी के खत्म,
2: थोड़ा सा टाइम दे, अभी बात कर लेते
1: हैं। चला चला

0: हाँ सखी, अब बोला जाए हम लोग?
1: हाँ बोलो। हाँ, हमसे हमरे इजाजत लिया जाता
0: है। हाँ, आपके इजाजत लिया गया है। अब उधर सखी से
1: अरे मेरे के पूछियो तो हमका अजीब सा लगा था का?
0: का है?
1: नहीं नहीं ऐसे ना करो का, अब जो है बोले के टाइम में बोलो।
0: आपसे हम आज्ञा नहीं लिया है। हाँ? आपके काम से आज्ञा लिया है प्राविधिक माँ। अच्छा? आप आपसे आज्ञा लेख पड़ा
1: हमका बोली का लगा की हमसे आज्ञा लिए हो।
0: नहीं, आपसे नहीं लिया है, आपके काम से लिया है। लेकिन
1: काम बोलत भी है का?
0: अबू आप जानो, अब कहे ना आपके दुई आँखी है दुई कान है तो दुई काम है। दुई काम है कि नहीं है? काम है दुई
1: काम है दुई तीन काम रहा थे।
0: तो ठीक है, अब जैसे दीदी आप सुनावागा गीत है नी। लेकिन ये गीत बड़ा बहुत बढ़िया हमका लाग, सावन के ऊपर सुनावागा है ये गीत, बहुत ही बढ़िया लाग है। वैसे देखो माता जी भी कही नहीं है कि अपना रूठूंगी है नी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अब न रूठे तो अब रूठे की बात ही नहीं है। तो अब सावन में हम लोग क्या करा जाए कि माता जी तना हम लोग का पूजा पाठ तो सावन भर कर ही का है।
2: बिल्कुल,
0: तो इस सावन में हमारे सखी लोगन का कुछ संदेश, सावन के शुभकामना का देख चाहा जाता है, आप अपने मन के बात जो भी है बोला जाए।
2: हाँ,
0: हमारे सखी हम लोग सुने तैयार हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमार तो यही प्रार्थना है भोले बाबा से।
0: हाँ।
2: और गौरी मैया से कि माता रानी जैसे ये महीना हरियाली हरा हरा छाया है, ऐसे सबके मन भी हरा और घर भी हरा भरा रहे, सबके मन में शांति सुख शांति बना रहे, कि केहू का ना वो कड़वा वचन बोलें, जब ना बोली है तो सुने भाई ना पाई है।
0: हाँ।
2: कहते जो इंसान बोई वही काटी,
0: काटी, वही काटी। हाँ।
2: तो अपने तरफ से सबका यही कोशिश करे चाहिए कि सबसे हम अच्छे से बात करी बोली बतियाई और सब हमें ऊपर वाला फिर हमें वैसे ही वही लौट के हमें मिले खे। हम यही प्रार्थना करे चाहे थे अपने भोले बाबा और गौरी मैया से।
0: सही बात है कि कतक खुशी की बात है, आपके सोच विचारे निराली है। और हम लोग भी यही चाहा जाते कि कार्यक्रम द्वारा आपे तना हर महिला लोगन का हम लोग उजागर करे चाहा जाते कि जो आप लोग काम करा जाते हैं जो और सबका सिखावे चाहा जाता है। आपसे प्रेरणा हम का देख चाहे थे कि आप कितना यही प्रेरणा हर महिला हम लोग के हर दीदी बहनी आप लोग ऐसे न अपने काम का कबो निराश मत न हुआ जाए कि हाँ हम लोग काम ना कर पेबे।
2: हाँ।
0: काम तो आप लोग सबसे ज्यादा मेहनती सबसे ज्यादा महिला का माना गया है, कहे से घर गृहस्थी के साथ साथ काम करा जाता है।
1: काम भी करा जाता है, घर भी संभाला जाता है।
0: अभी के बाद है आपसे महान और को हो सकत है, लेकिन आपके वही काम के पहचान बनावे का तरीका, घर गृहस्थी तो आप घर के लक्ष्मी हो कहा जाता है, लेकिन आपका पहचान बनावा जाए, आप आगे बढ़ा जाए, कोई प्रतिक्रिया लेख हो कुछ आपके कामन के प्रचार प्रसार करे के या हम लोग से भी संपर्क करा जाए, हम लोग आपके हर कामन के का कैसे है वो के व्याख्या करके हम लोगों का उजागर करे माँ मदद करा जाए। और ये कार्यक्रम घर अंगना तो आप लोगन के है ही है, नाम है घर अंगना है, घर अंगना से जुटा है जो भी समस्या है, जो संस्कृति है, जो हम लोग के त्योहारें हैं और जो हम लोगन के व्यक्तिगत बातें हैं आप लोग से जुटा है। तो हमरे सखी आप भी कुछ कहे चाहा जाते
1: हैं? बस अब हमका टाइम ही नहीं है, मतलब कार्यक्रम के टाइम नहीं है का? अब बस अब वही वहाँ कह चुके हैं हम, बस ऐसे ही भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, सब लोगन का स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें,
2: स्वस्थ रखें।
0: हाँ,
2: स्वस्थ रखें, लेकिन स्वच्छ भी रखें,
1: स्वच्छ भी रखें
2: मन, मन,
1: हाँ, मन स्वच्छ
2: रहे। रही
1: देखो जमान
2: तो मन दिमाग शुद्ध रहे।
1: हाँ, और स्वस्थ भी रहा जाए। हाँ। सभी कोई हर मनोकामना पूर्ण करें भोलेनाथ, हमारे ही कहें मतलब है। और मतलब जो महिला लोग हैं आगे बढ़े है ना, हम लोग इनका देख के उनके उत्साह बढ़े।
0: तो क्या करा जाए सखी, समय के हम लोग अंतिम अंतिम आए हैं, तो अंतिम आए से कहा है कि सावन तो है। हाँ। सावन की शुभकामना संपूर्ण श्रोता लोगन का भी है, सब आप लोग सखी लोगन का है, आप लोग ऐसे हरी चूड़ी के साथ मेहंदी के साथ। हाँ। और रमावा जाए और अपने आप में मस्त रहा जाए, काम धंधा करा जाए, और फिर सोमवार के उपवास तो प्राय, और बिटियन में तो पूछो ना, बिटियन तो सोमवार के उपवास जरूर रखते हैं, कैसे बोले ना तना श्रीमान पति पावे करते तो जरूर। ऐसे जैसे हमारी दीदी अभी कहना सुनाई नहीं है कि अब ना रूठूंगी अब भंगिया पीसूंगी, तो
1: आप लोग भी भांग धतूर चढ़ाई के भोलेनाथ से वरदान पावा हाँ, जाए
0: तो चढ़ावा तो जाते से कि बेलपत्री भांग धतूर सब चीज उनका चढ़त भी है और उनका चढ़े के बाद ही कहा जाते भोलेनाथ खुश होते हैं। तो जरूर हम लोग के ऐसे चीजन से मेहनत करा और भगवान की आराधना ऐसे सावन की शुभकामना है स्वस्थ रहा जाए। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दोनों सखी के तरफ से आप ही कार्यक्रम में आवा गया था
1: अपन अमूल्य समय दिया
0: गया थे और समय अनुसार आपका हम लोग इके मारे कि आपके मन से हम लोग जुटे हैं आपके गीत संगीत सुने कारण भी और जो सावन में आपसे जब गीत संगीत सुना जाते तो मने कुछ दूसरे हो जाते कि हम लोग सावन संबंधी गीत संगीत सुने खातिर पहले नाम आपके याद हो जाते। तो आपके काम करते हुए और जो भी आपके जो जीवन शैली है आपकी प्रगति हो आप स्वस्थ रह जाए हमेशा और ऐसे प्रेरणादायी समाज में आपके जीवन में छावत जाए आप प्रेरणा ऐसे देते जावा जाए और हम लोगों के साथ आप लोगों के हमेशा साथ रही और यही धन्यवाद देते और हम लोग भी अब विदा लिया जा हाँ, सके
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो आपका
2: हम भी दो शब्द बोले चाहे तो अपने श्रोता के लिए कि उनका अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छा हमें लगा हो और अपने इन दोनों बहनन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे हम सब मिला करी जब भी समय मिले और ऐसे हमारे श्रोता भी मिला करें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब
0: धन्यवाद है आपका और जरूर हम लोग के साथ ऐसे बरकरार बना रही सालों से हम लोग जुटे भी हैं ना ऐसे हमेशा जुटे रहा जाए ये विश्वास के साथ है। तो श्रोता संपूर्ण आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो 1 बजे से 3 बजे तक साथ दिया गया कार्यक्रम सुनते रहा जाते हैं और ऐसे किस सारे फिल्म सुनते रहा जाए अगले हफ्ता फिर नया विषय वस्तु के साथ हम लोग उपस्थित हुए हाँ। तो सखी विदा लिया जाए बार बार हुकारी आपसे भरवाई थे है नहीं आप परेशान हो प्रतीक माँ है
1: बार बार वही पूछो तो
0: बस गलती हुई गवाह है
1: नहीं
0: जावा जाए
1: तो चलो फिर
0: ठीक है तो फिर नमस्कार
1: नमस्कार
0: राम राम शुभ दिन।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
5: नींद
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
6: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेग्रा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848-20-697, 9858-23-697 और 9814-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
6: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97 46 11 786 98 224 92 377
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
9: Back to back.

0: Back to back. Back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: आप सुन रहे हैं यादों की सरगम यानी बीते लम्हों की मधुर आवाज।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी